0: हे निमा मुलु दु ज्वाली था निवा दुमा नासामु मोवा दुमा जोसालु इजे बिलीली तमा ताकपी गुठीपी मा मुंजे ग्वा साजे निचे तुमा बीपी खा वा शिचु मुंगा मा आंजी नुपंदु बोंगा हे निग्वा लेमिपोनी निजे था वा हान निचे कुत ग्वा नु थाबो जिलो ला नेलो छितो छिसेमदे हाहा जा नाना वादे वने कुखै वाखिनी नुदे थिख्वा लोने लांगा बेखु जजु मुमुदा माबोहा वा मुगवा खमा आंजिले हामिमीला हाहा जा ग्वाजु गाछि नासा दुबोंगा छंशुई इजे खमा हिजा ग्वा नुदे बिये शुतितु बियेंगो मु हांबा लुई हांबा सी वां दुजा तामा इंगोजा गलियो साजे नीचिमा बेवा वनुदे जिशी शेशी तिन्न नुगो वाजसु साक्वै मिहिं पीपी जिला था नुनी ग्वाबी शिचि मुग्वा बुतामा ग्वा नुमीमा गादाली बुती वाजु मेदु बालुलु तमा साख्वाग्वा वना मुग्वाकमा हाबाग्वा बोफु बिनिजु निजा बुजाग्वाबी बोहामा थुथु ग्वाजु लाजिवामा दाशि मुजे जिजु थिजु जिसुनि निमाखुग्वा जिखु जिहामा फिलाजङा इजिचिथा सुविवि गानलाम्बिङ्वा इनिग्वा नि जाग्वा शिचि मुग्वा मुलासु वा थिथि जुग्वा नि नुले कुमा इजिदे गा मुलिजु दा मान्दा
1: नि नमाना नासुबो इजा नि जाबो आमना ने मुग्वा फुमा जिङा थिथि तो मुग्वा फुमा जिमा कोन्या फुबा क्वेदे दोमो लि सुपा से निया खा निया मुग्वा इशि पुला हामा ते दोमो लो मुगुआ तेबे माफुमाओ आमना ने फुबा क्वे मुकुलो बेमाना

ते चुए छोटे छो मंगवी खाता खालू का आखो चीचे दावी मा चोता अभी ताले अने अनु पे हलाकू खाना को दा पा दा मा गावी जा ऐ हो छोगा मी खा उ हलाकू मी खा वी ब्योशान यहाँ जा जाए मी खा के गया को जो नो चीचे था पा दा मा गावी निमा को जा वी ओ छोता नो यो था दोनो हलाकू नो खा के कु हाना को ला लो

ते चुई छोटी छो मंगवी खाता खालू का आखो चीचे दाबी मा चोता अभी ताले अने अनु फैहलाकू खाना को दा फा दा मा गावी या एहो छो का मी खा उहलाकू मी खा वी प्याशा न्हा जा जाए मी खा के गया को जो नो चीचे था फा दा मा गावी निमा को जा वी अछो था नो यो था दोनो हलाकू नो खा के कु हाना को ला लो अछो